0: सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत।
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करा प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप।
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइए।
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे।
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान।
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवा नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ।
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप।

0: कई कोट अंध ज्ञानी,
1: कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिक आत्म नकोर,
0: कई कोट पर दर्ब कहिर है, कई कोट पर दुख न कर है,
1: कई कोट माया शर्म माए, कई कोट पर देश पर माए,
0: जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाना करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी,
0: कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए,
1: कोट पवन पानी वै संतर, कई कोट देश भू मंडल,
0: कई कोट शशियर सूनक अतर, कई कोट देव दानव इंद्र से शतर,
1: सकल समग्री अपने सूत तारे, नानक जिस जिस पावे तिथि निस्तारे,
0: कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद पुराण सिमर प्यार सास।

0: कोट आकाश ब्रह्मांड
1: कई कोट होए अवतार कई युगत कीनो विस्तार
0: कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एकंकार
1: कई कोट कीने बपात प्राप्ते होए प्रमाय समात
0: अंत ना जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म परगास
0: कई कोट तत् के ब्रेते सदा निहारे एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सद सद ही जीवे
0: कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहज

0: कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन भरमै भरमिया
1: नाना रूप जो स्वागी दिखावै जो प्रभावै तवान चावै
0: जो तिस पावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए
1: प्रभु को।

0: सोबाते ही न
1: संत के हति तो रखा न कोई संत का दुखन फाल प्रस्त होई
0: संत कृपाल के पाजे करे नानक संत संग निंदक पी तरे
1: संत के दुखन पे मुख पवा संतन का दुखन काग जो लवा
0: संत के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रैक जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा में जला संत का दुखन सबको छला
0: संत के दुखन ते सब जाए संत

0: सर्वन दान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे कालह ना पाहे
1: सब कुछ तिसका हो करने जोग तिस बिन दूसर हो न होग
0: जप जन सदा सदा दिन रानी सब ते ऊच निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थी।

0: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा
1: सागर समग्री घट माही अंतरंग नाना दृष्टाही
0: नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम।

0: जना सुने सुब बचन सर्व व्यापी राम संग्रचन
1: जिन जाता तिस पिए रहत सात बचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख मान।

गुरु प्यारी सत्संग जी, इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी। आओ जी हुण साडे अति सत्कारयोग ज्ञानी अमरीक सिंह जी दमदमी टकसाल उन्हां पासों लड़ीवार गुरु इतिहास सरवण करना करिए जी। आप जी ने असीस बख्शिश करनी, फतेह गजाउणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बोलो जी वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती।

जय त्रिख मत जा कर खै तह नानक हर हर अमृत पर खै भगत जनक भरत नाम संत जनक अमर विश्राम हर का नाम

हर का नाम जानकार मुक्त जगत, हर का नाम जानकार त्रवत भगत, हर का नाम जानकार रूप रंग, हर नाम जबत काब पारा नाम भंग, हर का नाम जानकार वडियाई, हर का नाम जान सुभा पाई।

को अपने सुबल रसा संग हम शुर है जेको जन्म मरण ते डर सा जन की शरण पर है जिस जन का प्रभु प्यास नुता बैल बल जैसा।

महार स्वामी सकल कटाक्ष अंतर्जामि अपनी गायत्र में जान आप महंगा प्रवराती तुम रिवस्तत तुम दिव्य नानक न जान सके सर्वतरम श्रेष्ठ तरम हर को नाम जाप निर्मल कर्म सकल।

कोमला निजी प्रसाद भोग हं सब रसा सब समग्र संग साथ वसा दिन हस पाव करुण निज तर रसना ते सह त्याग और संग रचना से दुख मुड़ंद व्याप नान काल लिखु प्रव्याप याद अंत जो राखन हार ते सस्यों प्रीत न कर कुवार।

बाहर साहु लिया गया निमन रोष करे अपनी प्रति युद्धा भी खोए बाहर उसका विश्वास न हुए जिसके बस दहाकर है प्रभ्या का माना बात है उसे चौगन करें है नानक साहिब सदा दया रंग पैदमय गीत सर पर्वत जान सर पर होवत जान अनीत बिरकिशा सिमरंग लावे ओह बिन समर पछतावे।

प्राव कृपा तुम प्रकाश प्रबोधयात कमल प्रकाश प्राव सो प्रसन्न वसमा सो प्रबोधयात मा तुम प्रबोधयात मा तू तुम सर्व धाम प्रवति माया कशुन कन हो जित जित लाभ हो तित लग हरनाथ।

सजाग जीवन हर की कथा श्रद्धा बसाव सब पंडित फिर जो नया वेद प्राण समर्थ पूजा मूल सुख मह गान अस्तुभ्र चह वर्ण प्रति उपदेश नान पंडित को सदा देह बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चह वर्ण नाम जप को गुणाम जो जो जप है तस्गत वैसा संग पावे जन कोई कर कृपा अंतर और

ज्ञान पूरा कर अखियाव जाका मंत्र अमृत दृप्य खावे संत गुण व्यंत किमत नहीं पाए नन जह पावत लय मिलाय जह भाई को सद अनेक साथ पुरख पूर्ण बबी कह बोल ना पह जत प्राणी अगम गोचर परम निर्वाणी

अनाथ राज रंगमय विस्तारंती कह हुकम छुटकारा सुहस्ती राथ सवारी झूठ डंफ झूठ पा सारी जिंदी बुझा न बिगाना नाम सा नानक पुछता न गुरु की बात तुम लिख या नहीं भगत बिना बड़ू बिस्या न हरि भगत।

सर्वनाशाय शिवाय नान गुण गाव गुण गावत त्रिवत्र समेत विंस जाम विस्पैल हुरिया चंत वासा सुखनाल सहस्रा सना समाय षट सिंह सगरी मना सत्संग पाव सजतन हर पुंजी संच कर व्यवहार हर सुरतर का जकार सर्व नरंत एक देख कवन अनुजा के मस्त देख एक बजा भी कुशला ही सिमरी कुमारा ही इसके गुण गाव अनंत मंत जा भी भगवंत एको एक हर आप पूरन पूरे प्रभ आपन सारी देव एक अराद परा छत गए मंत्र अंतरिक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक जाता सर्वोक फिरत फिरत प्रभ आया पर तव शरण आय नानक प्रभ

प्रजा पशुपत जब अकारि उपासन दृष्टि तपापन तब कहती होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर प्रबुद केश संकमाद जब इसका वरण चिहन न जाप तब हर शोक कह कस व्यापद

कमलाई। भगत कर हरि के गुण गाय, मन अंतर विश्वास कर माने, करुण अरुण के जाने, जन लागा हरि के नाय, दुष्टि आसन वृत्ति जाय। सेवकाओ सेवा बनाई हुकुम।

राखियो। चेत चेत नारायण एक एक रूप जागरंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुखन पून कृपाल। सिमर सिमर नाम बैर बैर नानक जी अकाय आधार।

करे प्रभुगाज प्रगट उपाद महांत कमथ नान कुदरतन का साथ सरण जोग संसरण आय कर कृपा प्रभा मिलाई मेट गए बैर पय सब दिन रतना मुसा संग्रह सुप्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण हो सेवक सेवा जंजाल विकार ते रहती राम नाम संरसन कहत कर प्रसाद प्रवता नानक निवही के हमारे प्रभु तत् कर संत मीत सावधान एकाग्र जीत सगुण सहज गोविंद गुण नाम जसमान वासा सोधन धान सर्वेच्छा तक पूर्ण हो प्रधान गुरु प्रगट सवल हुए सब ते ऊच पाय स्थान बहन होया मन जान हर तन खट कर जन सोय नानक जिस प्राप्त हुई किम शांत रिद नाम रिद बुद्ध ज्ञान सब तह सिद्ध विद्या तप जोग प्राप्त ज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कौन प्रकार सब कम सकल देवता सुंदर चतुर्ता कविता समुद्र से एक दृष्टिता यह पार तह जान का मुख परि गुरु नानक नाम वचन मन स्नेह निदान जप मन को सब जोग महता का तुए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमर सहत वेद बखान सगन मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत का मन विश्राम कूट अपराध शासन बेटा संत कृपा जमती छोटा जग मस्तक करम प्रपाय शासन नानक तियाय जिस मन बसा सुना राय प्रीत यह जन आवे हर प्रवचीत जन वरण ताक दुख निवार दुराब देह तत्काल उदार निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन वाहि सुमारि दुख रोग विनसि पै परम

कथना कथी न आवै टोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मे हुक्म चलाए राहो, नानक बिगसै वे प्रवाहो। साचा साहिब साच नाए, भाख्या पाओ अपार, आखह मंगह देह देह, दात करे दातार। फेर कै अगै रखियै जित दिसै दरबार, मुहाऊं कै बोलन बोलियै जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ।

है ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान। पंचे सो है दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार करते कह करण नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार तबलै उपर केता पार। धरती होर परै होर होर तिसते भार तलै कवण जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए। केता तान स्वालेहो रूप केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कवण कहाँ विचार वारिया ना जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह भख सार असंख मौन लिव लाए तार। कुदरत कवण कहा विचार वारिया ना जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जा है जोर असंख गलबट हत्या कमा है। असंख पापी पाप कर जा है असंख कूड़ियार कूड़े फिरा है। असंख मलेश मल भग खा है असंख निंदक।

अमोल बख्शीस अमोल निशान, अमोल कर्म अमोल प्रमाण, अमोलो अमोल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करहे वख्याण, आखे वरमे आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद, आखे ईसर आखे सिद्ध, आखे केते पीते बुद्ध, आखह दानव आखह देव, आखह सुर नर मुन जन सेव, केते आखह आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करेह, ताय आख नस कह के ई के, जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल गाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार, सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सर्व समाले, वाजे ना दे अनेक असंखा, केते बावन हारे, केते राग परी स्यो कहियन, केते गावन हारे, गावह तुहन पौन पाणी वै संतर, गावह राजा धर्म द्वारे, गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावह इंदे दासन बैठे देवते आदर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच प्याले, गावन रत्न उपाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोत महाबल सूरा, गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, से तुदनो गावह जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन, से मैं चित न आवन, नानक क्या बीचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती, कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता आपणा, जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, हुकम न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई, मुंदास संतोख सरम पाचोली, ध्यान की करह विभूत, खिंसा काल कुवारी काया, जुग डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आदे अनिल अनादे अनाहत, जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दयकार चलावह, लेखे आवह भाग, आदेश तिसै आदेश, आदे अनिल अनादे अनाहत, जुग जुग एको वेस, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी।

निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, जन्म है, वर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अवीक है, रफीक है, अतंत है, अबंध है, नृभूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसीक है, नृलंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अक्रम है, अभ्रम है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, मान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे, नृसंगी प्रमाथे, नमो पाण पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पाण पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्ये, नमो नाद नादे, नमो पाण पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ति स्वरूपे, प्रभंगी प्रमाथे, समस्ति विभूते, कलंकं विनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राजराजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राजराजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेखी अपरमी अभोगी अभूते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं,

परं परं परमेश्वरं प्रोष्पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं शेदीय भेदीय नामंग कामं समस्तो प्राजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद। जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं प्रियंग प्रयात छंद। अगाधे अबाधे अनंगी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्त्वं नृनाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साहसाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृसंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिद्धे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदारिद्र सिद्धंग निवासी चर्पटछंद त्वप्रसाद। अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रू आल छंद त्वप्रसाद। आदि रूप अनादि मूरत अजौन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपुण काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप प्रसाल।

अभंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी स्वरूपे स्रभंगी अनूपे न पोत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रवाहै अजहै अजाहै भगति छंद त्वा प्रसाद कै जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सल सलाम हैं समस्तल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी देहांत हैं के राजक रहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनीमुल फिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीपुल सिकन हैं हिरासल फिकन हैं कलंकंक प्रणास हैं समस्तल निवास हैं गंजल गनीम हैं अर्जायक रहीम हैं समस्तल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकुंक प्रणास हैं वेहस्तुल निवास हैं कैसरबुल गवन हैं हमेशल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परम परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं आदेशुल अलेख हैं अमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुर अजमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुभाष हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं कै अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग नाग हैं के अमितो अपंग हैं मधुपार छंद प्रसाद मण मण प्रणाम गुणगण मदाम हर पर अगंज हर नर प्रभंज अणगण प्रणाम मण मण सलाम हर नर अखंड वर नर अमंड अनुभव नास मण मण प्रकाश गुणगण प्रणाम जल थल मुदाम अणशज अंग आसन अभंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल मंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अणभव नास त्रित धरत रास आ जान वाह कै सदाह ओ अंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अणशज गात आ जजना पात अण झंझ गात अनरंज पात अण टुट भंडार अण ठट अपार आ डीठ धर्म आदि ढीठ कर्म अण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोलमना छंद त्वा प्रसाद करुणालय है कर कालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के धरन है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंपर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनास्य है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंड

कृताकृत है, तरणी कृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजपाकृत है, अमृतामृत है, नारनायक है, खलकायक है, विश्वंबर है, करणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पवभंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापण है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकर है, हर्ताहर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवास है, जासके जास है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राजराजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग तामसंग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे।

रूपेर्मो इंद्रियनादंगिपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंकेर्मो आस आसे नमो वाक् पंके अपंगी स्वरूपे अनंगीय नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगीय कामे एक छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे प्यंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे दृकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सच दानंद सत्रंग प्रणासी करीमुल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभू

चौपाई संबत सत्रह साहस पुणिजय अर्थ साहस पुण तीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रवि बारा तीर स्तोत्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहयो सब तो है बखान्यो दोहरा।

मुहूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख

जप आद सच जुगद सच है पी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगद सच

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

महाराज, पावन पितर हुक्मनामे बख्शिश करके संगतां निहाल करो जी। हुक्मनामे दे चलने समर्था बख्शो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता आवे, नानक नाम चढ़दी कला।

0: जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुला
1: जे प्रसाद तो सब रसा।

0: ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी का घर सदा आनंद,
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता,
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल।